मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पातशाह प्रगट जाए, मन्नै मग न चले पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेड़ा वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उती माह कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया।

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध।

गावै तुहनों पौन पणी बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख है कीता अपना जीवत सदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै।

आओ। भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौं कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर अलख पारा, चिंता करो हमारी, जलथल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

अनेकुल तरंग हैं, अभेद हैं, अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं, गनीमुल खराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओंगाद रूपे अनादि स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शंता प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तातय न मातय न जातय न पातय निरसाकं श्रीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजिर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं कि साहिब की राह हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तुल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तुल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के मित्तो अपंग हैं मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंदता प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर हैं विसंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं धरणी तृत हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं
विसंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्पायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजैब विभूते गजैब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माति मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विनय अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसा सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुद्र लोक गयो परलोक गवायो
बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई। बहर असुर का काठ समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा। द्वितीय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तु जिनर नाहर। पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सब ज्ञान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो। आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सुपमते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा परजा तर तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे।

महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग रो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं ताके काल निकट नह आय हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांश्त फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया। शब्दों ता गावो हरि के राम।

सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

हाथ दोनों गोड़ियां ते रखे ने उत्ते सिर रखे थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनन दी कोशिश पे कर दे ने ए बीबी पिंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे रोज आंदी पति नू रोटी खवाण वास्ते आवाज विच ऐसी खिच है इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी अज तीसरा दिन है कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी पर जदों आवाज सुनदी है तां मन खिंचिया जांदा कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है कहन लगी ढाडी भी सुनी दे ने व्यावां दे विच गीत भी सुनी दे ने गाई दे भी ने पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

माली थोड़ी दूर गई, आवाज आनी बंद हो गई। इस बीबी ने देखा एक वजंतरी बैठा है। वजंतरी कहंदे ने साज वजाण वाला। इस वजंतरी दी झोली विच एक साज पिया। ए बीबी चकदी चकदी कोल गई, मथा टेकिया, पुछिया, साईं जी तुसी केड़े देश दे लोग हो, कित्थों आए हो, गांदे हो के जादू तोड़दे हो? ताड़ी भी सुनी देने, व्यावां विच गीत भी सुनी देने, पर जो तुसी गांदे हो ए कदी नहीं सुनिया। सुने इंदर लोक विच देवते बहुत अच्छा गांदे, तुसी इंदर लोक तो ता नहीं आए? वो वजंतरी कहन लगा, नहीं बेटा, असी ऐसे देश दे लोक हां, इत्थे साडे माता पिता, इत्थे साडे भैन भरा।

पत्नी नु प्रशादा छका के दुध गर्म कीता, गड़वे विच दुध पाया, छन्ने दे विच सक्कर पा के कपड़े नाल बन के कड़वा सिर ते रखिया। दुध लैके उसे पासे तुर पई जिधर ओ वजंतरी बैठा सी। जद उस जगह पहुंची तो अज वजंतरी का मालक भी नाल बैठा। वो वजंतरी कुछ साज बजा रहे है, मालक कुछ गा रहे है। कौन है मालक, कौन वजंतरी? मालक है धन गुरु नानक साहब, वजंतरी मर्दाना साज बजा रहे। धन गुरु नानक साहब सारंग राग दा

हरी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि ओदे तू बगैर ते जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, भेदों का दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए हैं, देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। धन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे चार

दोदा कह लगा नहीं पातशाह आप दा दिता बहुत कुछ है। महापुरुषा दे तीन बचन होंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मंग लै, ता दोदा कह लगा पातशाह जे तुखे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छां गावां होन, दो तीन बलदा दियां जोड़ियां होन, सोने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग ले। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया सतगुरु जी टूठे ने नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपां लैंदे नी। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू तां जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया तां होली, पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दोदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालियां हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी ओह भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पासे।

अद तू अगे आया अचानक दिखना बंद हो गया नजर कुछ नहीं आता एकदम रुक गया पिछा मुड़ के देखे ता थोड़ा थोड़ा नजर आता है पूरा नहीं दिसदा अन्ना हो गया अगे जांदा है कुछ नहीं दिखता पिछे मुड़दा है चौला पहनदा है पूरा नहीं दिसदा ना अगे जान हुंदा है ना पिछे मुड़न हुंदा नाल दे साथी बड़े हैरान ने कि करोड़िए नूं की हो गया है करोड़िया कहंदा है मैनूं दिसदा कुछ नहीं अगे जाना बिल्कुल अन्ना हो जाना वा पिछे मुड़दा वा ता भी नहीं दिसदा पूरा बड़ा परेशान हो गया ए दुनिया कुदरती कोई असूल ही ऐसा है कि कुछ लोग बंदगी करते नहीं कुछ लोग बंदगी करने वाले चंगे नहीं समझते उन्हां दी कोशिश होंदी कि जिहड़ा इंसान बंदगी कर रहे है इन्नू मैं खत्म कर दी ए बंदगी ना करे अज करोड़िया भी इसे वास्ते आया कि गुरु नानक दा प्रताप वध रहा है ए ता निंदकां दी चुक सी ते दूसरा माण ए कि मैं माया वाला वा मेरी धरती ते गुरु नानक ने कब्जा कीता मैं उन्हूं खत्म करना पर अन्ना हो गया ना अगे जाया जांदा ना पिछे मुड़िया जांदा ता इन्ने नूं ओ पागां वाली बीबी अते उहदा पति दोदा खेतां विच कम करके आ रहे सन करोड़िए नूं देखिया ता समझ गए कि धन गुरु नानक साहब नूं ते मारन वास्ते जा रहे हैं पर अन्ना हो गया उस बीबी ने आवाज दिती ओ करोड़िया शोक दी कांग गे इक नाड़ा जदों दरिया विच हड़ आया होवे तां उहदे सामने छाती नहीं डाई दी दरिया रोड़ के लै जांदा गुरु नानक दरिया है समुंदर है ते एवें अगे हिकड़ाई जांदा जे कुछ लैणा ही थले उतर घोड़े तू डांग सुट साथी वापस मोड़ मन विच निम्रता लिया वो गुरु नानक नूं मारन चलिया जिहड़ा मरिया नूं जीवन दिंदा इस जमीन बदले वो तारशां दा मालक है दाता वो दिंदा है तो उस गुरु नानक नूं मारन चलिया ते साहिब जी बाणी विच कहंदे ने जिस अगे जोर ना चले खले की चरदास जिथे जोर ना चले उथे हाथ जोड़ के फिर अरदास करनी पैंदी हुण करोड़िए दा जोर कोई नहीं चलदा डांग सुटी घोड़े तो थले उतरिया पैरां विच जुत्ती लाई साथी वापस मोड़े मन विच निम्रता लियांदी ता दिखण लग पिया तोता अगे वधिया करोड़िए दी बांह फड़ ली क्या करोड़िया तू गुरु नानक नूं मारन आया सी पर चल देख गुरु नानक तेनू की कहंदा है ते करोड़िया डरन लग पिया कि किधरे गुरु नानक साहब कोई सराफ ना दे दे माता मेरी कुल दा ही नाश हो जावे ए डरदा डरदा दोते दे नाल तुरिया जा रहे दरबार विच पहुंचे संगत बैठी है धन गुरु नानक साहब शब्द पढ़ रहे ने दुधे ने मत्था टेकिया।

समुदाय श्रद्धावान हो गए और एक दिन करोड़ी आप ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा बादशाह, इस सारी धरती

फिर आनंद नहीं है। इसलिए आओ बारो बिरतियां नू मोड़ो, जिथे भी सेवक की आवाज पुज रही है हजूरी विच वसो, ता अमृत कीर्तन अमृत बरखा होएगी अमृत कीर्तन दी। इसलिए आओ सारे प्यार नाल।

ऐसों से तंदुरुस्त के पाख्या जी समाधि आवाज की कर रहे हो तो हजूर कह

अमृत जल धारा पूर्ण सावक सगल मनोर पूरे जय जय कार्य जगंत लाभे सगलत

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उतारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह अतार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उतार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाचे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे परगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन सन्नी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसैस होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुत न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल परगास सब कह मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम।

जिस मन बसे सुने लाए प्रीत, तिस जन आवे हरे प्रवचीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्काले उतारे। निर्मल शोभा अमृत।

कोई मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्ह ने 12 साल

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथो दी मेनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावना।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे।

गुरु पातशाह इतों हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वल तुर पए, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं,

अमरदास न्योटियां दी ओट, गुरु अमरदास न्यासियां दा आसरा, गुरु अमरदास निलजियां दी लज, गुरु अमरदास निपत्तियां दी पत, गुरु अमरदास नितरियां दी तार, गुरु अंगद देव पातशाह वर दित्ती जा रहे हन, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

जयंती चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक

जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन

जब उतर करा कर तारा पर जा दर्द तब दे अपारा जब आकर कठो कबू तुम मैं मिलत दे तरसबू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपने बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचार तपेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूढ़।

आप अपनी बुद्ध है जेती स्वर्ण तिन भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहबत सिदा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुज खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संग्रह कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आजगात स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा।

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

अजकल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पिया सौदागरी करना पिया उस तो वेल नहीं। बेटा तू कि सौदागरी करना पे मैनू तो वेला ही नजर आना और ना तेरिया गल्ला सम

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलती हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर तो लकाई, उन्हें इंसानों ने दुखी वेख्या सी, कारू के राज भुखे वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग। इथों तक भी सुनिया सी कि कारू ने 40 गंज जोड़ रखे माया दा, और ढंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनू सजाए मौत हो जाएगी। ते कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जब कोई पैसा ना आया, अमीरां वजीरां नाल सलाह कीती कि बस सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। ता किसी ने एक सलाह दी कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेख्या कि किसी कोल भी पैसा नहीं है, तां एक नौजवान मन चला अपनी मां दे पास जाके रोण लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा जे बादशाह दी बेटी दा रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तां उम्र गवाई है इस राज विच, कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तां गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तूं की उम्मीद करदा है, झूठी गल ते इतबार ना करता। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लगो के रखिया हो। बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता ने दफनाया सी तो उसके मुंह विच एक पैसा रखिया सी। कबर खोद लै, उसके मुंह विचों कढ लै, वो तो हुण रस्म पूरी हो गई। जे वो तेनों मिल जावे, कहंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दिती, उसने मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया। उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

कुछ देर बाद फिर आए। उसके पुत्र मिले, पूछा भाई वो बैल किथे? कहन लगे जे तुसी गए ता दूसरे दिन चढ़ाई करेगा। ये गुरु जी का कौतक, उसका बेड़ा पार करना सा। नहीं तो पता नहीं कितने कितने बड़े बैल दियां जोड़ना भोगदा, कितनिया चोटा खांदा, भाई सच्चे पातशाह टुट पए से उस खा मुखा पार करने वाली गई। जिसने सतगुरु दयाल हो जावे फिर उसने पाप गुण नहीं वेखदा, गुण अवगुण नहीं वेखदा। गुरु जी दयाल हो गए, फिर पहुंचे पूछया वह बैल किथे? कहन लगे जी चढ़ाई कर गया, मर गया। गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेखिया कि हुण तां घर अंदर कुत्ता बन के पहरा दे गया। बैल दी जान तो कुत्ते दी जान जा गया। मरदानिया हुण तां आपां नूं घर जाना पवेगा, क्यों गरीब नवाज? मरदानिया हुण तां वो बिरद कुत्ता बन के पहरा दिंदा है, घर विच रहिंदा। चल पे घर आए, प्रशादे की बुरकी पाई, कुत्ता नेड़े आया। गुरु जी ने सिर ते हाथ रखा, उसने सोझी हो गई कि मैं कौन हां ते ये कौन हां। गुरु जी ने आख्या क्यों गई? मोह दियां चोटां खांदा।

जा ना जावे पर मनुष्य जामे विच ही पैरा ही तो दिंदे ने कई बजुर्ग पुत्रां धीआं नूं वेल नहीं कह दिंदे ने बच्चियां दा ध्यान रखना फिर कह दिंदे ने हुण बच्चियां नूं छुट्टियां ने असीं घूम फिर आईए तुसीं घर ख्याल रखना पैरे तो सिवा ड्यूटी केड़ी रह जांदी है पैरा ही दिंदा है पर ओहो जे बजुर्गां नूं भी कहीए कि हुण नितनेम करिया करो तां उन्हां दे पास भी समा नहीं क्योंकि इन माया जग मोह गुरु जी कह लगे चंगा भाई तेरी मर्जी और छोटा खा ले फिर गए काफी समय बाद आए गुरु जी ने पूछा भाई वो कुत्ता कित्थे जेड़ा घर विच आख्या जी तुसी गए ते थोड़े दिन बाद शरीर छड़ गया गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या कि कुत्ते तो मर के उसकी आत्मा एक सर्प विच प्रवेश की थी सप बनिया होया वो एक बार पंगूड़े विच खेल दे बच्चे वल जा रहा सी पड़ोसियां ने मारिया बाणी च लिखिया है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जी मरै ऐसा चिंतन करद्या होया मौत हो जावे पैसा पैसा सिमरद्या मौत हो जावे तां कहिंदे ने सर्प जोन वन वाला उतर उसनूं सप दी जोन लैनी पवे ते दूसरी गल गुरु साहिबां ने सहस्कृति दे श्लोकां विच ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਗ ਵੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪ ਨੈ ਕੁਲ ਖਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੂਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਖੂਟਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਪ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਾਂ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਐਸੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ जिसने गुरु नहीं धारण किया भाई गुरु भी धारण कर जितनी देर गुरु नहीं धारण कर दे ता सिखी नहीं कमा सकते सिखी की रहत मर्यादा उस दिन शुरू होगी जो तुसी पहला कदम रखिया अमृत छक लिया गुरु धारण कर लिया अमृत ही छकाया जाना है अमृत छकाने वास्ते अपने नाम गुरुद्वारा साहिब सत्कार जो ज्ञानी जी पास जां जिथे हुण बाद विच विचार करके दस दिता जाएगा दफ्तर विच ज्ञानी जी पास अपने नाम लिखाओ अमृत छक जेड़ा गुरु मंत्र तो हीणा है वह भी इन्हां टेढ़ियां जोनां विच जाएगा ते जेड़ा माया दा चितवन करदा करदा मर गया उस सर्प जोन गुरबाणी च लिखिया सर्प जोन वल वल सप दी जोन चो मारिया परोसियां ने फिर हुण वी घर दी गंदी नाली विच उत्थे दा किरम बन के रह रहे गुरु जी ने दिव्य दृष्टि नाल वेख्या मरदाना जी ने कहा गुरु साहिबां ने कि उस नाली विचों उस किरम नूं कढ ले मरदाना जी ने उस गंदे नाले विचों उस कीड़े नूं कढ़िया धो के साफ करके गुरु जी दे पास रखिया गुरु जी ने उस नूं चुक लिया सिर थले रखिया अपना चरण लाया ते उस नूं पुछिया समर्था दिती पुछिया भी हुण कल्याण कर दईए तेरा हुण मुक्ति लैनी कि नहीं लैनी हुण तां ओह रो रिहा सी तां ही कि हुण मेरी बड़ी बुरी हालत है हुण कृपा करो हुण कृपा करो बख्श दे भुल्लां बख्श दे हुण मैनूं मुक्ति दे दे अपनी चरणी ला ला गुरु जी ने कृपा की मुक्त कर दे।

साथी भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाई नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी, अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा कटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओह गलत

this is what we have done. ऐसी कीता है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहात किसी ही पे सगले लर लर मुआ बाद बाद विवाद. हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साढ़े जीवन च बाद बहुत है, झगड़ा बहुत है, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया है, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा है, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ये प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तरह एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने हैं. ये तेतों हिसाब, तेतों ये सवाल, ये तेतों लेखा पूछा जाना है. कहंदे हन

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का कबा।

दौरी सत्संगत मिले सो तरिया सत्संगत मिले सो तरिया साध संगत हुए निर्मला एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

0: पंथ सुनियो गुर
1: संगत
0: मेरे माधो जी सत संत मिले सो तरिया कहे कबीर सुनो रे संतो सा